0: अरे बस बस बस बस, सांप ही रुक गया, आगे बढ़।
1: रे
0: रे के आगे क्या है? अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है तो मां,
0: चल वापस आ जा फिर से अपनी जगह पे।
1: सारे गामा
0: हाँ
1: मासा।

0: मत बोल, आ नहीं जा रहा।
1: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल,
0: सिग्नल को तोड़ दो बात बड़ी सिंपल।

0: This is Talk 100.3.
1: दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है. No really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है.

0: This is Talk 100.3.
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

कह दो हर नजर से हाँ, सबको ये बता दो कह दो हर नजर से हाँ, कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से हाँ।

0: This is Talk 100.3.
1: सुनो ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघो बाप ओ धोंडी बाप, आई का ओए जर्नल सिंह, ओए जर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: This is Talk 100.3.
1: आग कभी कभी रोशनी, कहीं कहीं शोर रौनकें, कहीं आग आग कहीं धुआं धुआं, कभी आस पास कभी यहां वहां, कभी शोर हो तुम कभी मौन हो तुम।

तुम्हें नाम दिया है मैंने एक, तुम्हें शक्ल दे रहा हूं मैं अब, मासूम नजर भोला चेहरा हंसते हुए लब। एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम, या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल हो।

जिसकी तस्वीर निगाहों में तस्वीर में देखे रंग गई, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग प्यार का।

0: तेरी सादगी अनमोल है, किरदार बेमिसाल है, तू जो भी है लाजवाब है, तू ख्याल है या एक सवाल है, तेरे सामने जो भी आएगा उसे तुझसे प्यार हो ही जाएगा।
1: This is Talk 100.3.